0: कुछ कुछ होता है क्या कर रहा है, कुछ कुछ होता है।
1: हसी Nikah abad merandu.
0: Sudah? Mulai ya.